हुरमत सुना कलिया वजो बिदू ना खाए खसमे गले बराबरी फिर कर अंदर पाए वजो गए अगला मह में पाना खाए तत्ता खावना तुसके ये सबात नार घूमना जल

0: पाउडी नानकंत ना जापनी हरता के पारावार आप करें शक्ति फिर आप करें मार
1: एक नाकली जंजीरिया

0: रखनी से पाशाह जी महाराज
1: हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह जी पिता महाराज आप रहमत बख्शिश के सच्चे पाशाह महाराज आप चरण में बिठा के सतगुरु जी शब्द कीर्तन करते हैं आशा दी बात संपूर्ण कीर्तन करते हैं बेंद प्रकार दी भूल गलतियां हो गई होनगी सतगुरु जीओ अनजान बच्चे समझ के माफ करना सगा तो समझ बख्शिश के दर आईयां संतन दर हाजरियां दर प्रवान करिए शब्द पेड़ वजो माया हजरत ने पाशा जी कल्याणी भरपूर करने दिनों दिन चढ़दी कला रखनी यात्रा सब

पिछा कौन जाने गोइने तेरे गावे ते ओए दावे सोने ते ओधवे वाइगुरु गावे ते ओए दावे सोने ते ओधवे वाइगुरु बिन से पाप घनेरे बिन से पाप घनेरे सुचिया पातिचा बिन से पाप घनेरे पैसे पड़े मगैद कोई तारे वायु पैसे पड़े मगैद कोई तारे वायु पाहे पारे उतारे पाहे पारे उतारे सचिया पातिचा पाहे पारे उतारे नानक दास तेरी शरणाई वाहिगुरु

बल्ले हरे सचिया सैदा सैदा बल्ले हरे तो दिया गे अरे दासे हमारी वायु तो दिया

अंदर जियो सब कुछ जान ला, सब कुछ तेरा बस तेरा घर पला, तेरे घर आनंद बधाई तुझे कर, मान महता तेज अपना आप जर सर्व कला।

धन छुट सब किश होत उपाए, नानक सब किश तुमरे हाथ में, तुम ही होत सहाय। संग सखा

पंचम हरख दिसाख सुनाव है, बंगालम मध माधव गाव है, ललत बिलाव लगाव ही अपनी अपनी भांत, अष्टपुत्र भैरव के गाव है गायन पात्र, द्वितीया मालको।

चंद्र बिंब मंगलन सुहाए, सरस बान अवाहे बिनोदा, गावे हैं सरस बसंत कमोदा, अष्ट पुत्र मैं कहे सवारी, हुने आई दीपक की बारी, कशेली पड़ मंजरी, टोडी कही अलाप, कामोदी अगुजरी, संग दीपक के थाप, कालंका कुंतल और रामा, कमल कुसम चंपक के नामा, गौरा ओ कांदरा कल्याणा, अष्टपुत्र दीपक के जा

दे गज के जगा रग जावे सो निहाल हो जावे सत श्री अकाल गुरबार अकाल देख देख पदे गुरपंथ खालसे जी दिनों दिन चढ़ दी कला रखनी सचे पातशाह जी।

त्वप्रसाद तोमर छंद हर जन्म मरण विहीन दस चार चार प्रवीण अकलंक रूप अपार अंश जते जो उदार अनभिज

कई कूक काव भणंत कई भेद भेद कहंत कई शास्त्र सिमृत बखान कहूं कथत ही सो पुराण कई

जलस्तु हि थलस्तु हि नदीस्तु हि नदस्तु हि वृक्षस्तु हि पतस्तु हि चितस्तु हि ऊर्ध्वस्तु हि भजस्तु वं रटस्तु वं झटस्तु वं जिमीतु हि जमातु हि मकीतु हि।

नाचत फिरत मोर बादल करत गोर दामनी अनेक भाव करी करत है। चंद्रमा शीतल न सूरज से तपत दिज इंद्र सोना राजा भाव भूम को भरत है। शिव से तपस्याद ब्रह्मा से न वेदचारी सनत कुमार से तपस्या अनत है। ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराई फिरत है। एक शिव भय एक गए एक फेर भय रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मार विषण कित वेद और पुराण कित समृत समूहन के होए होए बिताए है। मोहन दीम तार कित अश्विनी कुमार कित अंशावतार कित काल बस भय है। पीर और पिगंबर कित गन न परत ते भूमि हित हो के फेर भूमि ही मिलाए है। जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया गई कोसलो चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रप को दलत है। मान से महीब और दिलीप कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान भुज दंड को करत है। दार से दिल्ली सर दुर्जोधन से मानधारी भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत है। सिज दे कर अनेक तोप ची कपट बेस पोस दी अनेक दानी वावत है। शीस कहो गाह भयो मल्ल जो पिकाढ़त अनेक डंड सोत न डंडौत अस टांग अत तीस कहो कहा भयो रोगी जो पे डर रहे उर्द मुख मन तेना मुंड ने हो रायो आदिश कहो कामना अधीन सदा दामना प्रवीण एक भावना विहीन कैसे पावे जगदीश कहो। शीस पट कत जाके कान में खजूरा दस मुंड छट कत मित्र पुत्र हूँ कसोक सौ आग को चरैया फल फूल को बछैया सद बन को भ्रमैया और दूसरो न भूख सौ कहा भयो भेड़ जो घसत शीस वृक्षन सो माटी को बछैया बोल पूछ लीज जो कसौ कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कैसे भेट पर लोक सौ। न चुई करत मोर दादर करत शोर सदा घन घोर घन करुई करत है। एक पाए ठंडे सदा बन में रहत ब्रिज फूक फूक पाम भूम श्रावक धरत है। पाहन अनेक जुग एक ठौर पास कर काग और चीर देश देश विचरत है। ज्ञान के विहीन महादान में नहु जलीन भावना यकीन दीन कैसे के तरत है। जैसे एक सोंगी कहूँ जोगी या बैरागी बन कब हूँ संन्यास वेश बन कह दिखावई कहूँ पवन हारी कहूँ बैठे लाए तारी कहूँ लोभ की कुमारी सौ अनेक गुण गावई कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पहला गावे बारी कहूँ दंडधारी हो के लोगन भ्रमावई कामना अधीन पर नाचत है नाचन सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोक पावई। पंच बार की दर पुकार पर शीत काल कुंचर ओगा दहा अनेक दा पुकार ही कहा भयो जो पिकल वत्र लियो कांस बीच चीर चीर चोर डाक उठारन सो मार ही कहा भयो फांस डार बूढ़ जड़ गंग धार डार डार फांस ठग मार मार डार ही डूबे नरक दार मूड ज्ञान के बिना विचार भावना विहीन कैसे ज्ञान को विचार ही। ताप के सहत जो पे पाइये अतापनाथ तापना अनेक तन गायल सहत है। जाप के किए ते जो पे पायत या जाप देव पूजना सदीव तुही उच्चरत है। नभ के उड़ते जो पे नारायण पाइयत अनल आकाश पंछी ढोल वो करत है। आग में जरत गत रांड की परत कर पताल के बासी के भुजंग ना तरत है। को भयो मुंडिया सन्यासी को जोगी भयो को ब्रह्मचारी को जति अनुमान बो हिंदू तुरक को रावजी इमाम साफी मानस की जात सब एक पहचान बो करता करीम सुई रास करहीम हुए दूसरो न भेद कोई भूल भ्रम मान बो एक ही के सेव सब ही गुरुदेव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान बो देहो राम सीत सोई पूजाओ निवाज उई मान सब एक पया नेक को भ्रमाओ है। देवता देव जच गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देश

न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक दूर ते अनेक दूर पूरत है, दूर के कणों का फिर दूर ही समाएंगे। जैसे एक नद दे तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हो, ताही ते उपज सब ताही में समाएंगे। कित कछ मछ कित उनको करत भज, कित अच वच हो सब अच उड़ जाएंगे। कित नभ बीज अच पछ को करेंगे भज, कित

ताही ते उपज सब ताहि मैं समाहिंगे। कुकत फिरत कित रोवत मरत कित जल में डुबत कित आग में जरत है। कित गंग बासी कित मदीना मकानी वासी के तक उदासी के भ्रमाई फिरत है। करवत सहत कित भूम में गड़त कित सुअ पे चढ़त कित दुख को भरत है। ज्ञान में उड़त कित जल में रहत कित ज्ञान के विहीन जग जा रही मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दानो बड़े बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी घस हारे चंदन लगाए हारे चुआचार बूज हारे पाहन चढ़ाए हारे लापसी गाह हारे गोरन मनाए हारे वड्डी मटली बहारे बीतन लगाए हारे छापसी गाए हारे गंधर्व बजाए हारे किन्नर सब पच हारे पंडित।

मंत्र विद्या कहूँ तंत्र सारंग कहूँ जंत्र रीतं कहूँ शस्त्र धारण कहूँ होम पूजा कहूँ देवर्चा कहूँ पिंगला चारणी गीत चर्चा कहूँ भिन्न विद्या कहूँ गान गीतं कहूँ मलेज

कई अगन होत्र कई पवन हार कई करत कोट मृत को आहार कई करत साक पै पत्र फछ नहीं तदब देव हो वत प्रतछ कई गीत गान गंधरा बरीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूं वेद रीत जग याद करम कहूं अगन होत्र कहूं तीरथ धरम कई देश देश भाखा रटंत कई देश देश विद्या पढ़ंत कई करत भांत बांतर विचार नहीं नैक तास पायतन पार कई तीरथ तीरथ वर्मत सोभरम कई अगन होत्र कई देव करम कई करत वीर विद्या विचार नहीं तदप तास पायतन पार कहूं राज रीत कहूं जोग धरम कई सिमृत शास्त्र तुचरत सो करम न्योली याद करम कहूं हस्तदान कहूं अश्वमेध मुख को बखान कहूं करत ब्रह्म विद्या विचार कहूं जोग रीत कहूं बिरध चार कहूं करत जच गंधर्व गान कहूं धूप दीप कहूं अर्घ दान कहूं पितृ करम कहूं वेद रीत कहूं नृत्य नाच कहूं गान गीत कहूं करत सास सिमृत उचार कई भजत एक पग निराधार कई नेह देह कई गेह वास कई भ्रमत देश देशन उदास कई जल निवास कई अग्न ताप कई जपत उर्द लटकंत जाप कई जपत जो कल्पं ब्रजंत नहीं तदप दास पायतन अंत कई करत कोट विद्या विचार नहीं तदप दृष्ट देखे मुरार बिन भगत संगत नहीं परत पान बहु करत हो मर जग दान बिन एक नाम एक चित लीन फोकटो सर्व धर्मा विहीन त्वा प्रसाद तोटक छंद जय जम पह जो कंड जूह जुअंग भय कम पह मेर पयाल भुवंग तप तापल सर्व जलेर थलंग धन उचरत इंद्र कुमेर बलंग।

दीन जमीन जमा जे रचं सर्व मकीन मकां जय राग न रूप न रेख रुखं जे ताप न साप न शोक सुखं जे रोग न शोक न भोग भयं जे खेद न भेद न छेद क्षयं जय जात न पात न मात वितं जे रचयं क्षत्रि छत्र चितं जय राग न रेख न रोग भणं जे द्वैख न दाग न दोख गणं जय अंड दे ब्रह्मंड रचयो दस चार करी नवखंड सचयो रज तामस तेज तेज कियो अनुभव पद आप प्रचंड लियो श्रेय सिंध रू बिंद नकिंद नज गंधर्व फणिंद भुजंग रच देव देव भेव नरंग नरपाल नृपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंड से तज उद्भुजंग की ये देव देव सराध पितंगन खंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जात न पात न ज्योत जुतंग जे तात न मात न ब्रात सुतंग जे रोग न सोग न भोग भुवंग जे जंपय किन्नर जछ जुवंग नर नार नपुंसक जाह किए गण किन्नर जछ भुजंग दिए गज बाजर थादिक पाद गणंग भवभूत भविख भवान तुवंग जय अंडज से तज जे रजंग रज भूमा काज पताल जलंग रज पावक पवन प्रचंड बलि बन जास कियो फल फूल कली वो मेर आकाश निवासितंग रज रोज एकादश चंद्र पृतंग दुत चंद दिनी सह दीप दई जय पावक पवन प्रचंड मई जय खंड अखंड प्रचंड किए जय छत्र उपाय छपाए दिए जय लोक चतुर्दश चार रजे नर गंधर्व देवा देव सच्चे अंधूता भूता छूत पतंगन गाद प्याद अनाद गतंगन खेदा भेदा छेद नरंग जे चार चतुर्दश चक्र फिरंग जय राग न रंग न रेख रुगंग जय शोक न भोग न जोग जुगंग भू भंजन गंजन आदि शरंग जय बंदत देव देव नरंग गण किन्नर जाच भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रवान गंज वृतंग जय पार न पावत पूर्ण मतंग अनखंड स्वरूप दंड प्रभा जय जंपत वेद पुराण सभा जय वेद कतेव अनंत कह जय भूत अभूत न भेद लह जय वेद पुराण कतेव जप सुत सिंध दो मुख ताप तप कई कल्प लो तब ताप करै नहीं नैक कृपा निध पान पर जय फोकण धर्म सब तज है एक चित्त कृपा निध को जप है ते या भव सागर को तर है भव भूल न देह पुनर्धर है एक नाम बिना नहीं कोट प्रतिम वेद उचार सार सुती जो वारस के जस के रस है।

अनाथ है, समस्त सिद्ध वृद्ध दास जीव सर्वसात है, अनाथ नाथ नाद है, अभंज भंज है सदा, गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्ध दा, अनूप रूप स्वरूप है, अछिज तेज मानी है, सदीव सिद्ध शुद्ध दा, प्रताप पत्र जानी है, नराग रंग रूप है, नरोग राग रेक है, अधोग दाग तक है, अभूत ब्रह्म भेक है, न तात मात जात है, न पात चिहन वर्ण है, अधिक शेख भेक है, सदीव विश्वभरण है, विश्वंबर विश्वनाथ है, विशेख विश्वभरण है, जिमी जमान के विके सदीव करम वरम है, अद्वैक है, अभेक है, अलेख नाथ जानिए, सदीव सर्वठौर में विशेख अन मानिए, न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बसावई, पुराण यो कुरान नीत नीत कह बतावई, न कर्म में न धर्म में न भरम में बताइए, गंज आद देव है कहो सुख कैस पाइय, जिमी जमान के विके समस्त एक ज्योत है, न घाट है, न बाढ़ है, न घाट बाढ़ होत है, नहान है, नबान है, समान रूप जानिए, मकीन

है, अगंज है, अभंज है, करीम है, कुरान है, अकाल है, अपाल है, ख्याल है, अखंड है, न रोग है, न सोग है, न भेद है, न भंड है, न अंग है, न रंग है, न संग है, न सात है, प्रिया है, पवित्र है, पुनीत है, प्रमात है, न सीत है, न सूज है, न घ्राम है, न घाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नर को स्वरूप है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र

अछेद छेद है सदा गंज गंज गंज है अभूत अभेक है बलिय रूप राग रंग है न द्वैख है न भेक है न काम क्रोध कर्म है न जात है न पात है न चित्र

है न भ्रम है न धर्म को प्रभाव है न जंत्र है न तंत्र है न मंत्र को रलाव है न छल है न छिद्र है न छिद्र को स्वरूप है अभंग है अनंग है अगंज से विभूत है न काम है न

गजादपि नरादपि करंत सेवह सदा सिद्धस्पति तपस्पति वनस्पति जपस्सदा। अगस्त आद जे बड़े तपस्त भी विशेखिय बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ पेखिय अगाध आद देव की अनाद बाद मानिय न जात पात मंत्र मित्र सत्र स्नेह जानिय सदीव सर्व लोक के कृपाल ख्याल में रह।

दीन बंध प्रवीण श्री पद सर्व को करतार वरन चिहन ना चक्र जा को चक्र चिहन कार जात पात न गोत्र गाथा रूप रेख न बरन सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व भू को भरन दुष्ट गंजन शत्रु वंजन परम पुरक प्रमाथ दुष्ट हर्ता श्रेष्ठ कर्ता।

भूमका जले थले मेहमानिए जह नाम। दुष्ट हरता पुष्ट करता श्रेष्ठ हरता काम, दुष्ट हरना श्रेष्ठ करना दयाल लाल गोबिंद। मित्र पालक शत्रु गालक दीन दयाल मुकंद। अगाओ डंडन दुष्ट खंडन काल हुंके काल, दुष्ट हरनंग पुष्ट करनंग सर्व के प्रतपाल। सर्व करता सर्व हरता सर्व के अनकाम, सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निज भाम। सर्व भुक्ता सर्व युक्त

कोटेंद्र उपेंद्र व्यास नक सनत कुमार गाय गाय थके सब गुण चक्रत फे मुख चार आद अंत न मध जाको भूत बाप भवान सत दुआ तृतीय कल युग चतुर काल प्रधान ध्याय ध्याय थके महामुन गाय गंधर्व पार हार हार थके सब नहीं पाइये तह पार नारद आदक वेद व्यास

को आत्मा स्वरूप है कहाँ सृष्ट को विचार, कौन धर्म को कर्म है कहो सकल विस्तार दोहरा। कह जी तब कह मरण है कवन सुरक कह नरक, को सुघड़ा को मूर्ता कहाँ तरक अव तरक दोहरा। को निंदा जस है कवन कवन पाप कह धर्म, कवन जोग को भोग है कवन कर्म अप करम दोहरा। कहो सुसम का सो कह दम को कहा कहंत, को सूरा दाता कवन कहो तंत को मंत दोहरा। कहाँ रंग राजा कवन हरक सोग है कवन, को रोगी रागी कवन कहो तत्म है तवन दोहरा। कवन रिष्ट को पुष्ट है कहाँ सृष्ट को विचार, कवन सृष्ट को भ्रष्ट है कहो सकल विस्तार दोहरा। कहाँ कर्म को कर्म है कहाँ भ्रम को नाश, कहाँ जितन की चेष्टा कहाँ चेत प्रकाश दोहरा। कहाँ नेम संयम कहाँ कहाँ ज्ञान ज्ञान, को रोगी सोगी।

दुर्जंदल दंडन असुर विहंडन दुष्ट निकंदन आदि वृत्ते चरासुर मारण पति दो धारण नरक निवारण गूढ़ गते अच्छे अखंडे तेज प्रचंडे खंडे उदंडे अलख मते जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन रमक बर्दन छत्र छिते आसुरे बिहंडन दुष्ट निकंदन पुष्ट उदंडन रूप ते चंडासुर चंडन मुंड बिहंडन धूम्र विदुंसन मैक मथे दान प्रहारण नरक निवारण अदम उदारण उर्दे जय जय हो सी मैखासुर मर्दन रमक बर्दन आदि वृत्ते डावरू डवंके बबर बवंके भुजा फरंगे तेज परंग लंगुड़िया फांधे आयुत बांधे सैन विमर्दन काल सुरंग अष्टायत चमके भूखण दमके अत्से जमके भुंग फनंग जय जय हो सी मैखासुर मर्दन रमक बर्दन दैत जिनंग चंडासुर चंडन मुंड विमुंडन खंड अखंडन खून किते दामनी दमंकन सुजा परंकन फणी फुंगारण जोत जिते सरधार विवरखण दुष्ट प्रकरकण पुष्ट प्रहरखण दुष्ट मथे जय जय हो सी मैखासुर मर्दन भूमा कासल उर्दधे दामनी प्रहासन सुषम निवासन सृष्ट प्रकाशन गूढ़ गते रक्तासुर आचन युद्ध प्रमाचन हृदय नराचंदन अमृते श्रोणंत चिंती नल बिवंती जोग जयंती खड़क धरे जय जय ओ सी मैखासुर मर्दन पाप विनाशन धर्म करे अघ ओघ निवारण दुष्ट प्रचारण सृष्ट उपारण शुद्ध मते फणि अर्पुंकारण बाघ बकारण शस्त्र प्रहारण साध मते सहते सन्नाहन अश्र प्रवाहन बोल निबाहन तेज तुलंग जय जय हो सी मैखासुर मर्दन भूमा काश पताल जलंग चाचर चमकारं चिच्छुर हारण धूम धुंकारण त्रप मथे दाढ़ी व्रदंते जोग जयंते मनुज मथंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूर्य प्रतेजन अष्टभुजे जय जय हो सी मैखासुर मर्दन भरम विनाशन धरम दुजे भुंगुरु घमंकण सहस्र झमंकण फणियर भुंकारण धरम दुजे अष्टाड प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र गते केसरी प्रवाहे सुध सन्ना हे अघमथा हे एक वृते जय जय हो सी मैखासुर मर्दन आदि कुमार अगाध वृते सुर नर मुन बंदन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन।

संकटे निवारण तम उदाहरण तेज प्रकार कण तुंद तपे दुख दोख दहंती ज्वाल जयंती याद अनाथ अगाध अच्छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापण जपत जिवे जय जय होसी सहस्र प्रकार कण आद नीला गाद अभे चंचला जखंगी अलग भुजंगी तुंद तुरंगण तिच्छ सरे कर कसा कुठारे नरक निवारे अधम उदारे तूर भुजे दामनी दमंके के हरलंके आद तंके क्रूर कथे जय जय उसे रक्ता सुर खंडन सुंभ चक्रत निसुंभ मथे बारज बिलोचन ब्रतन विमोचन सोज विसोचन कौज कसे दामनी प्रहा से सुख सरना से सुप्र सुभा से दुष्ट ग्रसे चंचला प्रहंगी वेद प्रसंगी तेज

दुख दुख प्रभ क्षण से वगर क्षण संत प्रत क्षण शुद्ध सरे सारंग सन्ना हे दुष्ट प्रदा हे अर्दल गा हे दुख हरे गंजन कुमाने अधो प्रवाने संत जमाने याद अंते जय जय हो सी मैं का सुर मर्दन साध प्रत क्षण दुष्ट हंते कारण करीली गर्भ कहीली ज्योत जतीली धुंध मते अष्टायद चमकण सत्र झमकण दामिन दमकण आद वृत्ते डुक डुकी दमंगे बागव बंगे भुजा फरंगे शुद्ध कते जय जय हो सीमा खा सुन मर्दन आद जुगाद अनाद मते चछरा सुर मारण नरक निवारण पति दो धारण एक बटे पापान बेहंडन दोष प्रचंडन खंड अखंडन काल कट्टे चंद्रानन चारे नरक निवारे पति दो धारे मुंड मथे जय जय हो सीमा खा सुर मर्दन धूम्र विदुंसन आद कथे रक्ता सुर मर्दन चंड चक्र दंदान वर्दन बिलाल बदे सरधार विवर खंड दुर्जन धड़खन अतुल अमर खंड धरम धुजे धूमराज विदुंसन।

है तुमरे सुधुंदर श्री पदमा बदल है। रोगंते अरसोगंते जल जोगंते वो भात बचावे, शत्रु अनेक जलावत गावत तन एक न लागन पावे। राखत है अपनो कर दय कर पाप सम्भूहन भेटन पावे, और की बात कहा कह तो सो सो भेट ही के पट बीच बचावे। जाछ भुजंग सो दानव देव भेव तुम्हें सब ही कर द्यावे, भूम आकाश पताल रसातल जाछ भुजंग सब शरण्यावे। पाय सके नहीं पार प्रभाहूं को नेत ही नेत भेद बतावे, खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे। नारद से चतुरानंद से रुमनारिक से सब हो मिल गायो, भेद कते वन भेद लख्यो सब हार परे हर हाथ न आयो। पाय सके नहीं पार उमापद सिद्ध सनात सनंतन ध्यायो, ध्यान धरो ते को मन में जह को अमित ओज सब जग छायो। वेद पुराण कतेव कुरान अभेद निर्वाण सब बचहारे, भेद न पाए सक्यो अन भेद को खेदत है अनछेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न रासाक न सूक न संग तिहारे, याद अनाथ गादव्य गदवैग जप्यो तिन्हि गुलतारे। तीरथ कोट किए स्नान दिए बोधान महाव्रत धारे, देश विरो कर भेस्त बोधन केस धरे न मिले हर प्यारे। आसन कोट करे अष्टांग धरे बो न्यास करे मुख कारे, दीन दयाल काल भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे। त्वा प्रसाद कबित अत्र के चलैया छेत छत्र के धरैया छत्र धारियों के छलैया महासतरण के साल हैं। दान के देवैया महामान के बटैया, अवसान के देवैया हैं कटैया जम जाल हैं। युद्ध के जतैया विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के देवैया महामान हूँ के मान हैं। ज्ञान हूँ के ज्ञाता महाबुद्धता के दाता, देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल हैं। पूर्वी न पार पाव हिंगुला हिमालय द्याव गोर गर देजी गुण गावे तेरे नाम है। जोग जोग साधे पौन साधना कि तेक बांधे यार बके यार बिया राधे तेरे नाम है। फरा के फिरंगी माने कंधारी कुरे सी जाने, पच्छम के पच्छमी पछाने निज काम है। मरटा मंगल तेरी मन सो तपस्या करे, देड़ वै तिलंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली, दिल्ली के दल वाली तेरी आज्ञा में चलत है। रोह के रोहेले माग देश के मंगेले वीर बंग से बुंदेले बाब पुंज को मलत है। गोखा गुण गावे चीन मचीन के शीस न्यावे, ते पते दे आए दुख देह के दलत है। जिन्हें तो है ध्यायो तिन्हें पूर्ण प्रताप पायो, सर्व धन धाम फल फूल सो फलत है। देव देव तान को सुरेश दान वान को महेश, गंग दान को अभेश कहियत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण, और काहू पे न दीन साध दीन कहियत है। पाई न पार तेज पुंज में अपार, सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है। हाथी की पुकार बल पाछे पहुचत ताहि, चिड्ड की चिंगार पहले ही सुनियत है। कहते इंद्र द्वार कहते ब्रह्मा मुख चार, कहते कृष्णा अवतार कहते राम कहियत है। कहते सहस्रासी कहते सूरज प्रकाशी, कहते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है। कहते महाधीन कहते व्यास प्रवीण, कहते कुमेर कुलीन कहते जश कहियत है। करते हैं विचार पहना पूर्ण को पावे पार, ताई ते अपार निराधार लहियत है। पूर्ण अवतार निराधार है न पारावार, पाइय न पार पया पार के बखानी है। अद्वया बिनासी परम पूर्ण प्रकाशी, महारूप हूँ के राशि है अनासी के मानी है। जंत्र हूँ न जात जय की बाप हूँ न मायता के, पूर्ण प्रभा के सुछटा के अनमानी है। तेज हूँ कुतंत्र है के राजसी को, जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र कह के जानी है। तेज हूँ कुतार है के राजसी को सार है, के शुद्धता को घर है के सिद्धता की सार है। कामना की खान है के साधना की शान है, विरक्तता की बान है के बुद्ध को उदार है। सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है, के रूप हूँ को रूप है कुमत को प्रहार है। दीनन को दाता है गनी मन को गारक है, साधन को रक्षक है गुणन को पहार है। सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है, के क्रुद्ध को अभूत है के अच्छे अविनाशी है। काम को कुनिंदा है के खूब को देहंदा है, गनी मन गनिंदा है के तेज को प्रकाशी है। काल हूँ के काल है के सतरण के साल है, के मित्रण को पोकत है के वृद्धता की बासी है। जो को हूँ को जंत्र है के तेज हूँ को तंत्र है, के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है। रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है, के सिद्धता को वास है के बुद्ध हूँ को घर है। देवन को देव है निरंजन अभेव है, देवन को देव है के शुद्धता को सर है। जान को बचैया है मान को दिवैया है, जमजाल को कटैया है के कामना को कर है। तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है, महीपन को मंड है के स्त्री है न नर है। विश्व को वरण है के आपदा को हरण है, के सुख को करण है के तेज को प्रकाश है। पाई है न पार पार अवार हूँ को पार, जग की जत विचार सो विचार को निवास है। हिंगुला हिमालय गावे हब्बसी हलब्बी देवे पूर्वी न

अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है क सेवक अधीन है कटैया जम जाल के देवन के देव महादेव हूँ के देवनाथ भूम के भुजैया है मोहैया महाबाल के राजन के राजा महासाज हूँ के साजा महाजोग हूँ जोग है धरैया ध्रुम छाल के कामना के कार है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के छीर कैसी छीरा वध छाज कैसी छतरा नेर छपाकर कैसी छप काल निद्र के कोल के हंसनी से सिहा रूम ही रसी हो सनाबाद गंगा कैसी धार चले सातो सिंध रूल के पारसी बलाओ गढ़ रूपा कैसी रामपुर सोरसी सुरंगाबाद निके रही झूल के चंपासी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदागढ़ के रथ तिहारी रही मालती सी फूल के फटक सी कैलाश कमाऊ गढ़ कांसी बोर सी ससी सुरंगाबाद नी के सोहियत है हिमा से हिमालय हर हार सी हलब्बा नेर हंस कैसी हाजीपुर देखे मोहियत है चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रगिर चांदनी सी चांदागढ़ जोन जोहियत है गंगा सम गंग धार बकांसी बिलंदाबाद कीरत तिहार की उजियारी सोहियत है फरासी फिरंगी फरासी सके दुरंगी मकरान के मृदंगी तेरे गीत गायत है फकरी कंधारी गोर कखरी गदारी पवन के आहारी तेरो नाम ध्यायत है पूर्व पलाऊ काम रूप कमाऊ सर्व ठौर मैं विराज जहां जहां जायत है पूर्ण प्रतापी जंत्र मंत्र दे या तापी नाथ की।

जन जुग मैं सुखवासी से मुकत पए जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी जिन हर निर्भव त्याया जी तिन का पाओ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी।

बिन सतगुरु के ना पाया सतगुरु विषय आप रखियो उन कर प्रगटाक सुनाया सतगुरु मिलिय सीता मुकते जिन विषय मो चुकाया वो तमे विचार हैं जिन सच्चे सुचित लाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन

पड़पड़ घड़ी लीधी है पड़पड़ पर साथ पड़पड़ बेड़ी पाइए पड़पड़ घड़ी एक हाथ पड़िए जेते बरस बरस पड़िए जेते अम्मास पड़िए जेती यार जा पड़िए जेते सास नानक लेख एक गल हर मैं चकना चाक।

पहला कुर राजा कुर प्रजा कुर सब संसार कुर मंडप कुर माड़ी कुर बसनहार कुर सोना कुर रूपा कुर पनहार कुर काया कुर कपड़ कुर पपार कुर मिया कुर बीबी खपोय खार कुर कुड़े ने हलगा विसरा करतार कुसनाल कीचे दोस्ती सब जग चलन।

नानक पिन शरण का एक कृतवा जो जी फलटा ही ज्ञान विजेता है सतगुरु संतो का त्रम ग्रथवा त्रैत्र जते का जोर ग्रथवा दो पर पे का सत सत ग्रथवा।